0: के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Shagun Chopra. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the conference on Prahar, National CET Policy and Strategy in New Delhi yesterday. The conference deliberated upon the seven pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning with international efforts, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said, "The government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism." He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The minister also engaged bilaterally with his counterpart from the United States as part of ongoing efforts to advance a balanced and mutually beneficial India-US bilateral trade agreement and finalize an interim deal. Indian Navy will host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation, operational and area commanders. It will undertake a comprehensive review of our operational preparedness at the military strategic level and engage with senior government functionaries through an institutionalized mechanism. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy, amidst the ongoing conflicts in West Asia. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations from Indian Navy. The Chief of the Defence Staff and the Chief of the Army Staff will also engage with naval commanders to foster tri-services synergy and integration. The FASTag annual pass has crossed a significant milestone of 1 crore passes issued after its launch on 15th August last year. Ministry of Road Transport and Highways said that the milestone reflects growing acceptance of the annual pass among private vehicle owners for providing a seamless and economical travel option on the national highways and expressways. It said that the pass is applicable on about more than 1,000 fee plazas on national highways and national expressways, which eliminates the need to frequently recharge FASTag through one-time fee payment of 3,075 rupees for 1 year validity or 200 toll plaza crossings. India has dispatched about 3 tons of anti-tuberculosis medicines to Colombo to help support Sri Lanka's public health system. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar announced the dispatch and expressed India's commitment to supporting its neighbouring country. Dr. Jaishankar said, "India remains committed to supporting Sri Lanka's public health system." About 3 tons of anti-tuberculosis medicines were dispatched to Colombo yesterday. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, with athletes and shooters adding several medals to the country's tally. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal with a personal best effort of 85.72 meters, while Rohit Yadav claimed bronze with a throw of 84.35 meters. In the men's long jump, Sri Shankar Murali secured the silver medal with a best effort of 8.07 meters. Gulveer Singh also added another silver to his tally after finishing runner-up in the men's 1,500 meters. He had earlier won silver in the men's 10,000 meters. In shooting, Isha Singh won silver in the women's 25-meter pistol individual event. The 21-year-old Indian shooter finished second with a score of 38 points. And that is the end of this news bulletin.
2: ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 ఎఫ్ఎం మనసు నిండా. ప్రార్థన భక్తి సంగీత కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి భక్తి గీతాలు ప్రసారం.

0: మీరు విన్న ఈ గీతంతో ఇయలటి అంబటాల సంగతుల కార్యక్రమం సమాప్తం. తిరిగి రేపు పొద్దుగా లేడింపావుకి ప్రసారమయ్యే అంబటాల సంగతుల కార్యక్రమంలో పానం పదిలంలా తెల్ల గలిజేరు ఉపయోగాల గురించి ఆదిలాబాద్కి చెందిన ఆయుర్వేద వైద్యులు డాక్టర్ జక్కుల నరేందర్ ప్రసంగం, ఇంకా భేటీలో అరుదైన వన్యప్రాణులకు ఆవాసం కవ్వాల్ అభయారణ్యం, మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారం అటవీ డివిజనల్ అధికారి ఎం రామ్మోహన్తో ముచ్చట ప్రసారమవుతుంది. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా సమయం 8 గంటలు కావస్తున్నది. మరికొంచెం సేపట్ల సమాచార ప్రభాత్, 8:00 మార్నింగ్ న్యూస్ ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలీ అవుతాయి.
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा. भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की. अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया. और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची. अब समाचार विस्तार से. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है. सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की 2 भाषाओं सहित 3 भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था. ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के

0: निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गाँव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व खातू में ग्रामीणों ने सामूहिक

0: भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
1: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
0: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
2: नाम है चुन्ना हरदा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उलदा रहा है, उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
0: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
3: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
6: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को दो पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
3: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण आंतरिक कर्नाटका तमिलनाडु पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश केरलम माही कोंकण गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है किशोरियों से गैंगरेप पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े चार और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें, बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ता ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विद्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू कंसीडर एग्जेम्प्टिंग क्लास 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम सीबीएसई'स 3-language पॉलिसी दिस ईयर। Indian Navy to host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. Delhi government prepares tougher action plan to control air pollution in the national capital during winter season. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. And Indian men's cricket team advanced to the semifinals at the Asian Games in Japan. The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the 3-language framework that has been granted to students of Class 7. We have more from a correspondent.
9: A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bharti appearing for the Centre and the CBSE to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of three languages, including two native Indian languages for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE statement, the current batches studying in classes 7, 8 and 9 would not be required to give board examination in third language when they progress to class 10. The Solicitor General has submitted that about 99% of schools have adopted the third language policy and have been provided the necessary facilities and only about 1.2% of the schools have not. During the hearing, the centre, however, maintained that it

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें तेज चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सरायकाले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा, फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है, जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो, तो ये रातों रात नहीं है। लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि गौरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है महिला लोगों के लिए, एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वाकअप बोर्ड और वाकअप काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वाकअप बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकअप काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल

0: कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
1: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रुपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
2: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर आपके साथ वक्त मिला है कुछ बातें करने का, कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि समय कितना गुजर जाता है जब हमारा मिलना वैसे तो होता है, लेकिन हाँ इस मंच की देखिए अलग ही बात होती है ना। तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो भाई मंजू जी भी है और मंजरी भी है और ये लोग क्या दिल की बातें करते हैं ना।
1: बिल्कुल। और देखिए दिल की बातों की आपने बात की, तो जब भी मिलते जुलते हैं तो दिल की बातें करते हैं और कर ही लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: कहते हैं कि दिल की बातें कर लेने से मन जो है हल्का

0: का हो जाता है और हमें थोड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारी सखी ने, हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने हमारे दिल की बात सुन ली। हो सकता है वो कोई उस चीज का कोई सोल्यूशन दे सके, कोई उसका निर्णय निकल सके।
1: बिल्कुल।
0: और एक मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही साथ हृदय की जो या दिल की जो सेहत है वो भी दुरुस्त रहती है।
1: बिल्कुल दुरुस्त रहती है और बातों का कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाता है।
0: सही बात है। और तो आज के विषयों की बात कर लें हम सबसे पहले।
1: हमने तो बातों में आपने दिल की बात करी, उसमें अभी विषय आपने निकाल दिया, तो मैंने कहा भाई मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे दिल से, तो कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाएगा।
0: तो तुमने भी विषय की बात कर दी
1: मुहावरों की दुनिया में, है ना।
0: बिल्कुल। तो आज का हमारे जो विषयों में सबसे पहला विषय होगा स्वस्थ दिल लंबा जीवन।
1: जी।
0: चूंकि आज विश्व हृदय दिवस है तो हम दिल की या हृदय की बात करेंगे। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे महिला उद्यमी अदिति बलबीर की।
1: जी। और इसके साथ हल्की फुल्की बातें में होगा कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाने दे। यानी ये जो सारी चीजें है ना, आज ये दिल की बात है, फिर अन्न की बात है और राय के पहाड़ बनाने की बात है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। क्योंकि दिल से हम अगर खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे, तो हम पूरा ठीक से खाएंगे, और दिल से नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थाली में छोड़ देंगे, है ना।
0: बिल्कुल।
1: जी। तो इस तरह की बात
0: है। अन्न को व्यर्थ ना होने दे, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और अगर बच जाए और किसी तरह आप अगले दिन उसका उपयोग कर सके तो अच्छी बात है। या जैसे किसी समारोह में अगर बच जाता है तो आपको किस तरह से दूसरों को वो दे देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके, इस के अंतर्गत हम यही बातें जो है करने वाले हैं। इसके अलावा मुहावरों की दुनिया में जैसा तुमने बता ही दिया है कि राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बता देना, जितनी बड़ी वो है भी नहीं बात।
1: बिल्कुल। तो, और मंजू जी, राई को अगर हम चाहें भी कि एक पहाड़ की जैसे खड़े करने की सोचे, कल्पना भी करें, तो राई
0: नहीं
1: रुकेगी नहीं, वो भरभरा के गिरी जाएगी।
0: हाँ। तो इसी तरह से जब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ा बना देता है तो जैसे राई भरभरा के गिर जाती है, उसी तरह वो बातें भी कभी न कभी सामने आकर के गिर जाती है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो स्वस्थ दिल लंबा जीवन, दिल की बातें हम करते हैं तो दिल हमारे शरीर का इंजन है, और जब इंजन सही चलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी लंबी और सुहानी चलेगी। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं, ताकि हम सब इसकी अपनी इस धड़कन की कद्र करना सीखे।
1: बिल्कुल। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, खराब खान पान और लगातार बढ़ते तनाव का जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे दिल पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है मंजू जी कि अपने दिल को मजबूत और सेहतमंद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने दिल को भी संभाल सकते हैं।
0: बिल्कुल। और दिल को सेहतमंद रखने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आसान भी है और कारगर भी है। इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है, तो उन आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे और श्रोताओं के कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल को सही रखने का एक और तरीका है, संगीत। कितना दिल को है ना खुशी से भर देता है, मन को खुशी से भर देता है, उससे भी तो हमारी सेहत अच्छी होती है।
1: बिल्कुल। आपका इशारा हम समझ गए।
0: चलिए सुनते गाना।

0: मंजर ये गाना हमने सुना दिल मेरा बस में नहीं, लेकिन दिल को बस में रखना पड़ता है,
1: बिल्कुल रखना
0: कई बार हालांकि हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन दिल को बस में रखना या वश में रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो भी एक कला है मंजू जी।
0: हाँ,
1: कि हम अपने हर परिस्थिति में, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे गम के दिन हो, दुखी वाले दिन हो, हर समय हमें अपने दिल को बहुत मजबूती से रखना पड़ता है, कि तभी हम सामने जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, चाहे खुशियों के दिन हो, उनका सामना हम कर पाते हैं। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। स्वस्थ दिल हो तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की रौनक बनी रहती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बहुत सीधी बात लिखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम सखियां मिलती है तो दिल की बात करती है, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों में,
1: मतलब गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम का अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें, ये प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी, वहां 4-5 दिन में चली जाती। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही है इंसान की जिंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अब जल्दी ज्यादा सुनाई देने पड़ गई कि तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियां सुनाई देने लग गई हैं।
0: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के जमाने में इन बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है। देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे, तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया है, लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहां ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है, रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य हैं। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताजा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीजों को शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आप सादा भोजन करें और खूब सारा पानी पिए और हरी सब्जियां, फल वगैरह खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहें।
0: कुल मिलाकर हम वर्षों से जो परंपरागत तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खान पान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
1: और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती है।
0: देखिए रखना तो जरूरी है ही, क्योंकि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम को समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
1: और आपको से ही तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने लिखी।
1: एक लिखते हैं कि मंजू जी कि मुस्कान और ठहाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है, क्योंकि बिना हंसे के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मजेदार और तीखे डायलॉग्स नजर आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब जाते हैं लंबे सफर पर तो दिखता
0: एक
1: है।
0: हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपने दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है उसके बारे में बात करेंगे, अदिति बलबीर की बात करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि वी रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है। उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था। अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र हैं। उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की। अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी। 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज्यादा रिसोर्ट के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया। ये रिसोर्ट ऑफबीट यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसोर्ट बन गया है। बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलबीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसोर्ट्स की संस्थापक है, और उन्होंने भारत में ऑफबीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अदिति बलबीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में पीजीडीएम यानी कि एमबीए की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की है।
1: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की। उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली।
0: बिल्कुल, और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी इस बारे में भी हम आपको बता दें। प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटीक रिसोर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसोर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन। इसी अंतर को खत्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसोर्ट्स की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसोर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसोर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वी रिसोर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा।
1: बिल्कुल, और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है, और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में स्थित रिसोर्ट्स में भी मेहमानों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पेशेवर सेवाएं देना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। और स्थानीय रोजगार और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने रिसोर्ट में 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, यानी कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाया।
0: हाँ, ताकि लोकल लोग जो है वहां के वो एक तो होता यह है कि उनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है। दूसरा, जो वहां के लोग होते हैं उनको उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। दूसरा, जब उनका घर वही है तो वहां उन्हें काम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है। वो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए रोजगार भी मिल जाता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुंचाना, ये भी इस चीज का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलबीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वुमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा सीएनबीसी टीवी 18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेन्स एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और हॉस्पिटेलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: इतना सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है, जो जब उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह की सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो चीजें उन्हें मिली हैं सम्मान पुरस्कार वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीजों को हम अच्छा करने के लिए सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहां काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी
1: जी,
0: या फिर वहीं जाकर के हम पैसा कमा सकते हैं या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नजर डालें या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है
1: जी,
0: अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीजों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहां ये छोटा सा काम करेंगे तो अरे हमको कौन पूछेगा, या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नजर डालें, और कई बार क्या होता है जिससे कई महिलाओं को या पुरुषों को जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
1: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे जाने दीजिए।
0: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ही लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला कोई व्यक्ति इस चीज को ठान ले कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती? तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लें।

0: तो मंजी, गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना।
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा भारी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है, अन्न के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कोई दिन ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हों, कुछ तो हम खाते ही हैं, पीते ही हैं। तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है। हमारे संस्कारों में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने दे।
1: बिल्कुल, और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है। जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने में लगी उस व्यक्ति की मेहनत यानी किसान की मेहनत, पानी, ईंधन और जमीन जैसे अनमोल संसाधन भी बर्बाद होते हैं। क्योंकि दिन रात अपने खेत को सींचकर बीज डालकर बोना, फसल को देखना पल पल बढ़ते हुए, फिर उसमें अन्न लगता हुआ, दाने लगते हुए देखना, उनकी जो कहते हैं बालियां लगती, गेहूं की बालियां लग रही, तो देख के वो कितने हर्षित होते हैं। और जब या तो प्राकृतिक गड़बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारे पास तक वो खाना आ रहा, अन्न आ रहा है और हम उसको कदर नहीं कर रहे हैं तो फिर मन खराब होता है कि नहीं, एक गेहूं के दाने से हम कितना अन्न उपजा सकते हैं।
0: बिल्कुल, किसान की मेहनत तो अपनी जगह है ही मंजरी, लेकिन उसके बाद हम भी तो उसे बाजार जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, घर में लाते हैं, उसके बाद उसे बनाने का जो एक प्रोसेस है बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है, उस तरीके से हम भोजन को पकाते हैं और उसके बाद जब हम खाते भी नहीं है उसे यूं ही फेंक देते हैं, तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि सही बात
1: सही
0: नहीं है।
1: बात नहीं।
0: हमारे साथियों ने ये बात लिखी है कि अन्न केवल हमारी भूख नहीं मिटाता बल्कि ये किसान की महीनों की मेहनत, पानी, मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। जब हम अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो हम केवल एक निवाला नहीं फेंकते बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है, ना जाए व्यर्थ उनका एक भी दाना, अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं, इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं और उतना ही आप थालियों में डालें। अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं देखते वहां पर बहुत सारी चीजें आप ले लेते हैं या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसका जूठा छोड़ देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती बर्बादी ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर में जाते हैं वहां की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहां की उनकी बात की, वहां दो लोग सबकी थाली

0: खाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं है, उसे वही पूरा खाना पड़ता है, तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है। वैसे भी हम पहले थोड़ा कम लें और फिर चाहिए तो और ले लें। और देखो, जो भोजन व्यर्थ होता है ना, उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है, तो वहां खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती, बहुत तरीके के व्यंजन बनते हैं, और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो लूं कम से कम,
1: खा सकते हैं आप सोचिए,
0: जबकि उसके पेट में उतनी जगह होती नहीं है, लेकिन वो सब ले लेके चखना जरूर चाहता है, और उस चक्कर में जब कोई भी चीज थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे लगता
1: है। वो तो खैर ये अपना सोचना, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह की चीजें रखते हैं, और सलाद के भी इतने सारे वैरायटी होती है, फ्रूट्स की भी होते हैं, स्टॉल होते हैं कि सब तो नहीं खा सकता कोई। तो ठीक है, आप उन्होंने लगाया ये आप, उनको अपना अपनी तरह से सबको स्वागत करना है, लेकिन हम अपने लिए अपनी थाली में अन्न का स्वागत हिसाब से करें, वो ज्यादा सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे मंदिर में जहां खाना होता है वहां दीवारों पर लिखा होता है खाओ मन बचाओ नकन, और इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सुंदर सी बात है। इसी तरह एक साथी और लिखते हैं कि अन्न का दाना व्यर्थ न जाए, इसके लिए घर या सामूहिक भोजन के वक्त ये बात ध्यान में रखें, इतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। सभी ने ऐसी बात लिखी है। और थाली में लिया हुआ खाना झूठा होकर या बचकर बर्बाद न हो, शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े। इस न लेने जाने की मानसिकता से भरी आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीजों का भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में, आपके लिए भोज का इंतजाम किया है, आयोजन किया है, तो उसके खाने की आप कद्र करें,
0: बिल्कुल
1: उसको व्यर्थ ना जाने दें।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता बल्कि उसे उगाने में लगी किसान की मेहनत भी जाती है, और यहां कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि थाली में उतना ही ले जितनी भूख हो, और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और एक ये भी बात लिखी है कि जरूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। खरीददारी की योजना जो है उसके बारे में बाजार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना लें ताकि जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
1: और हम लोग पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

0: हॉर्स उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना, तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में, बनाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारा दिल नहीं करता है
1: बिल्कुल फेंकना,
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब हमारे भी होश उड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा है। और देखिए हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं, चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप उसमें डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजियां भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल की,
0: हाँ,
1: तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए।
0: हाँ,
1: कि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो खराब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दे, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते तो दूसरों को दे दें। जो भोजन आप खा सकते हैं, जो खाने लायक है, उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं। राई का पहाड़, ये कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: मतलब जैसे कोई बात चल रही है और किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती ना वैसी चटकेगी। कई बार ऐसा होता भी है कि साथ सारी सहेलियां या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की वजह से आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पे हम बैठेंगे, उस पे हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
0: वैसे देखो मंजरी, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो इससे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद होता
1: उन्हें
0: है,
1: उन्हें मजा आता है चटकारे लेके। हाँ। उसमें किससे अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते ना मुंह से बात निकली।
0: हाँ।
1: किसी ने कहीं तक कही लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा, उससे कहा, उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है।
0: हाँ, जब एक ही बात अगर मतलब 5-6-10 लोगों तक पहुंचती है तो उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका रहता है। यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता है।
1: तो बड़ी

0: जिन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दे। और जो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, बल्कि जो आपके पास समय है, जो ऊर्जा है, उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: ना, थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए, और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके अगर उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए। बात चाहे राई जितनी हो, समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे। रिश्तों की बात जहां तक है मंजू जी, कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए, आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया, तो जब मिले तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें, जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने। और एक लिखते हैं कि राई का पहाड़ कितना ही बड़ा हो पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफी है। बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राई का पहाड़ बना ले, उसकी बातों को जवाब ही मत दे, खामोश हो जाए। तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना, वो बहुत तेज होती है। तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है। तो कहना चाहिए कि राई, एक और लिखते हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को लास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है, जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही, जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा आप खींचे मत, इलास्टिक की तरह मत खींचे बातों को, वहीं पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है। तो हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की पहाड़ जैसी गलत बात को और किसी को बतानी हो तो उसे राई जैसा छोटा करके बताओ, क्या बात है। और अगर किसी की बात बहुत अच्छी है तो वो राई जितनी है तो उसे पहाड़ जैसा बनाकर बताओ ताकि हर कोई उससे कुछ सीख सके। बहुत सुंदर सी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, तो ये बहुत मतलब सारगर्भित चीज इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों की दुनिया भी गजब है। मेरे पास एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कहानियां थी, जिस कारण वो मुहावरा बना। वो किताब कोई मांग कर ले गया और वापस नहीं दी। राइस से पहाड़ बनाना छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना होता है।
0: क्या बात है, तो किताब देनी चाहिए किसी की भी ले जाओ तो देनी चाहिए।
1: हाँ,
0: और
1: हाँ, पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं
0: बिल्कुल,
1: और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं, और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं, और कई बार तो क्या जैसे किसी की आदत होती कि पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
0: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता
1: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप
1: बिल्कुल
0: सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कि ये लिखते हैं कि अन्य के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी बार बार कि संत का एक क्षण भी और अन्य का एक भी कर्ण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्य का एक दाना भी थाली में ना छोड़ें, और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं। कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहां पर बर्बाद नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी सी बात है।
1: हमारे साथी लिख रहे है कि अन्न में ही ब्रह्मा ही नहीं अपितु उसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी वो भी आज के महंगाई वाले युग में, तो ये तो जानकर के अज्ञानता का ही परिचायक है। फिर वैसे ही अन्य प्राण के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत पसीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सके, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है। मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए।
1: एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं हम उन्हें जरूर कहते हैं कि आप ऐसा न करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंका।
1: चलिए अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम दे देते हैं, नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं। जो अब घड़ी की तरफ हमने नजर डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी।

0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जेके तलपड़े तक, इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
1: जी जी जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। हाँ। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज।
2: हाँ, मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है और खासकर उस वक्त तो मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज्यादा रेडियो लोग ज्यादा सुना करते थे।
1: जी जी।
2: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की, जिसमें नए गाने आते थे और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल। और तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो है वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किया, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे गाने, किशोरदा के, रफी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
1: जी जी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आज। मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं।
2: हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ, शौकिया तौर पे।
1: जी हाँ जी हाँ, शुरुआत रेडियो की बातें से हुई, तो बचपन की यादें कुछ कैसा रहा परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
2: चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो

0: प्रोफेशन था वो, मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पे जॉब मिला, एडी। तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम दे।
1: पर फिल्मी हस्ती हुआ आपने देखा है अपने घर,
0: हाँ,
1: बचपन से
0: वो देखा था, तो उस वजह से मतलब मेरा, मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही हूँ, उनकी वजह से हूँ।
1: जी जी जी, उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम ऐसे चिन्ह नजर आए?
0: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। मैंने वैसे बचपन में एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी।
1: अच्छा।
0: तो उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, हमने SL स्टूडियो में शूट किया था उसको ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज्यादा दूर लगा था, अब और ज्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो हम वहां पर गए थे और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे मुझे मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ और वो अपने डायलॉग भूल गए। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है, तो मुझे डरना ही था इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला, अरे ये अच्छा एक्टर है। लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब कि, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनैलिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ करना नहीं है।
1: नहीं, आप जो हैं जिस भी पात्र में ढलते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
0: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर SSC बोर्ड में था, और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, BA किया, और दो साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया, और बाद में 3 साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था
1: जी।
0: तो वहां पर मतलब मेरी पूरी काया पलट हुई एकदम। वहां काफी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफी शुरू हो गया था
1: जी। अच्छा, थिएटर और ड्रामा?
0: थिएटर ड्रामा तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना, स्कूल में मैं कुछ कर पाया, इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहां पर नाटक हुआ नहीं, एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे। मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली वहां पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में, उन्होंने भी एंट्री मारी थी।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा, वो हुआ ही नहीं। फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया। फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
1: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं। हाँ, उस बारे में भी हम
0: जी,
1: बात करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
0: मेरी पसंद का कोई गीत, यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के। आपकी याद आती रही रात भर अगर।
1: अच्छा।
0: गमन से
1: थोड़ा सा गुनगुना देंगे।
0: अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना।

0: क्या बात है, सुनवाते हैं गीत
1: अभी से। मैं ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं।
0: नहीं नहीं, हर गीत जैसे पे हम नहीं गवाएंगे आपको, बच्चों को ऐसा चाहेंगे तो।
1: हाँ, कि बच्चे के बोलते हैं कि महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैं महाराष्ट्र, उसकी स्पेलिंग बताओ। नहीं, मैं गोवा में रहता हूँ।
0: नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए,
1: मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा।

0: अच्छा 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो उससे पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद नहीं हुई, पहले मैंने मेरा पहला काम जो
0: है
1: एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी।
0: हाँ हाँ,
1: तो मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में राशि प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके जरिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे नब कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया और मेरा एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिंपल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मजा आया था, मेरा पहला काम था वो और काफी मजेदार एक्सपीरियंस रहा था, वो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है?
1: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफी काम की तलाश चली और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज अ राइटर, वो भी राजुल की बदौलत। मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत बड़ा योगदान है, तो उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो उस तरफ बढ़ाया, रुझान। तो वो उन्हें पहले कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था, तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था राजश्री प्रोडक्शंस में। वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स खत्म होते थे तो मैं शाम को वहां पहुंचता था, हम गप्पे वप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे
0: जी।
1: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो और बोला यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे मतलब

0: तेरी लैंग्वेज पे काफी अच्छी कमांड है, तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा, मतलब एमटीवी के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी, उसमें उस वक्त वीजे थी वो उस एमटीवी में, तो वो शो लिखना था उनके एंकर लिंक्स, वीजे लिंक्स जो होते हैं कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा, तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ईटीसी, मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफी, और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, साल दो साल गुजर गए, राइटर का तमगा लग गया
1: जी।
0: फिर नौकरी की मैंने एमटीवी में 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल वी में था, तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी, मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज, तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई। बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज्यादा जो मैंने एंजॉय किया वो एमटीवी के जो 4 साल थे वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मैंने वहां पर सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए जो अब तक जिनके मैं टच में हूं जिनके साथ, तो वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं एमटीवी में।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया, ओए होए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया,
3: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया,
2: आके सीधी।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए होए, तेरी तिरछी नजरिया,
3: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया,
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सम...

अगोरी अगोरी बढ़ के बुदन चीर भी टकर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की, काफी चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था, 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था। और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या, वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब

0: अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा कुछ वो नहीं था उस ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते तो बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को और इतनी तारीफ की थी, और मतलब डैनी बॉयल साहब है वो
1: बिल्कुल
0: भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ, इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था
1: जी।
0: लेकिन उन्होंने दो दिन का रखा था बफर, फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था और नेक्स्ट डे शूट हुआ था, तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैं बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए।
1: अच्छा।
0: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने, मुझसे मिलने की जरूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मतलब मैं कभी जिंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा। मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता हूँ।
1: और जब तक है जहाँ उससे भी आप रिलेट किए, उससे कैसे जुड़ना हुआ?
0: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था, और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले। एक एड किया था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था
1: जी।
0: तो फिर से मुझे क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहां पर मैंने ज्वाइन किया एज एवीपी प्रोग्रामिंग, और वहां कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया।
1: अच्छा।
0: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो, तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो यूट्यूब पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके सीन्स के साथ ऑडिशन दिया, फिर वो हुआ। उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया उसके बाद मुझे जो जैन के जो मैं प्ले करने वाला था उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए। और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था।
1: अच्छा।
0: उस वक्त वो शानू की असिस्टेंट थी।
1: हा, हा, हा।
0: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
1: मौका
0: मिलते ही मतलब मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फोन किया शानू ने कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूं। तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला ठीक है एक बार और ले लो। तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में और वहां पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है।
1: अच्छा,
0: 2 दिन
1: बाद के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
0: हाँ, सेम रोल का ही मैंने इतनी बार ऑडिशन दिया। और वो फिर हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों, शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए था,
1: वो कुछ
0: और मैं उस वक्त एकदम ऐसा था 90 किलो का।
1: तो हमेशा ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है? बार बार राउंड्स देने पड़ते हैं?
0: हाँ, जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ

0: अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत जरूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं एमटीवी में मैंने मतलब काफी जो हम स्केच कॉमेडीज करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा एमटीवी बकरा करता था, अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ एक्टिंग का।
1: बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला, कहीं
0: बहुत सारे।
1: तो कैसा महसूस हुआ या वो हिम्मत कहां से आती है, मोटिवेटेड कहां से रहते हैं आपकी, नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं आगे और कोशिश करेंगे, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
0: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता। और मैं थोड़ा बचपन से ही काफी पॉजिटिव रहा हूं और मेरे आसपास भी काफी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूं इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है हम सब इसमें तुम्हारे साथ में हैं। तो वही और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है तो बस जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा
1: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट वो नजर आया फिल्मिस्तान
0: जी
1: फिल्म में।
0: हाँ।
1: तो वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने, उसमें डायलॉग भी है ये कि मेरा जन्म
0: मैंने लिखे हैं फिल्म में।
1: हाँ, वो आप ही ने लिखे हैं कि मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ है। तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे
0: फिल्मिस्तान? मैं असल में जब मैं तब ये यूटीवी मंदास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहां पे 3-4 महीने जो मैंने वहां पर गुजारे थे उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की। तो मेरे ऑफिस खत्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड। मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, बहुत सही है, ज्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है और मैं सोचता था कि कहां वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में मेन लीड में वो भी। बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई और उसी दौरान फिल्मिस्तान
1: दिया,
0: तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की वो मेरे हाथ ही नहीं आई। जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं सरेंडर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिल जाता है।
0: वो मिल जाता है, तो वही हुआ मेरे साथ में और इस तरीके से फिल्मिस्तान हुई और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपके पसंद का गीत
0: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
1: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी मतलब बहुत मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोरा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी है।
0: डायलॉग भी आपने लिखे हैं?
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा, बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीजें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था और मैं कर रहा हूं तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था मैं उससे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नजर आने लगा। और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो परफॉर्म करने में जो है मुझे थोड़ा दो दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ। लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे मैं बच्चों की तरह नाचता था।
0: जो कि हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा, बिल्कुल दिल खोल के जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था, पूरा एंटरटेनमेंट। और वो डायलॉग भी है उसमें कि
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। और जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: जी हाँ, फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म की है और उसमें भी नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा,
1: हाँ,
0: उन्हीं के साथ काम किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना ईजी भी होता है और कैसा ये अनुभव है?
1: नितिन के साथ तो मेरा अलग कम्फर्ट लेवल ही अलग है, हमारी हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग। तो मैंने उनके लिए और मित्रों एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं और राम सिंह चार्ली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है। वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर, वहां पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा, और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था, यार ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे और करते करते करते राम सिंह चार्ली

0: की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ। और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें। और हमने फिर मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की। और कुमुजी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने और आगे शायद पता नहीं कब करूंगा या करूंगा भी, यानी वो भी नहीं पता। लेकिन अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस, मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
1: मैं प्रोड्यूसर हूँ
0: तो राम सिंह चार्ली का हूँ। एक खूबसूरत फिल्म है। और यस,
1: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहां से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
0: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूं मैं
1: जी,
0: वही रचा बसा है।
1: काफी रिलेट कर पाते हैं।
0: हाँ, टोटली रिलेट कर पाते हैं। और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला, मतलब चेहरा भी वही है आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं। इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा या तरला का नलिन दलाल या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर मेहरूनी में जो किया है,
1: मेहरूनी की बात करते हैं, हाँ, बिल्कुल,
0: तो वो सब वैसे ही है। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
1: जी जी जी जी।
0: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है। और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज्यादातर जो है वो एक, हाँ, मिडिल क्लास वाला कैरेक्टर,
1: और दर्शकों से भी वो कहीं ना कहीं जुड़ाव
0: तो
1: आ जाता है।
0: हाँ।
1: यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गीत?
0: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, हाँ। मतलब काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज तुम्हें हो ना हो मुझको तो
1: बिल्कुल
0: इतना यकीन,
1: वो सुनवा देते हैं, वो प्लीज हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं। और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं, अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या खत्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी ताकत रही
1: जी हाँ, वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं, और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीजें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया था।
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन
1: जी।
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी जिंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत थी, बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर खत्म होने लगे थे, तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था, और ये और ज्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के जरिए, जब तक है जान के जरिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहां से करें क्या करें, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये जेके जो है उस वक्त जेके नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था, तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं। और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फोन का इंतजार भी करने लगते हैं कि यार अब घंटी बजेगी। और हफ्ता 10 दिन लग गया और उसके बाद लेकिन फोन आया। और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाल

0: बंगाली में, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे. नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में, मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबल हैं. तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूं, मराठी बोल लेता हूं. तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं उसको. फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब. तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो बहुत सारे मात्रे. फाइनली फिर वो जेके जो है, जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया. और फिर जब आया, जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक, इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक बदलाव आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है. और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था. जैसे ही फैमिली मैन आया सीजन वन और वो ओटीटी पर, मतलब एक अलग ही किस्म की, मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे. और लोगों ने बहुत देखा उसे और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह. सीजन टू आया और रिस्पॉन्स जो है वो डबल हो गया. तो वो मेरे लिए, मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया. स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया
1: जी.
0: और फिर काम और मिलता गया, लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई. और मतलब वो मेरी जिंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है फैमिली मैन. और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है.
1: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया, ये तो कुछ तो अलग आ गया है. तो क्या वो सब लिखा रहता है या
0: नहीं? नहीं, लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा. और सुमन कुमार जो है वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे, और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे. तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है, लेकिन राज एंड डीके जो है ना, हाँ, वो कभी कट नहीं करते हैं. जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था, उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते. और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम. तो वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ. और वो जब तक कोई हंसता नहीं है तब तक वो कट नहीं होता.
1: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है.
0: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है. उनके साथ आपको मतलब आपके एकदम टोस पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं. कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में. और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं और उसमें से कुछ जमती हैं, कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है. मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की. राजेंद्री के बहुत हमें मतलब आजादी देते हैं. जहां पे हम कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल. फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में. मैं मतलब एकदम आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स. यार यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है. आज मनोज सर के साथ शूट है, राज एंड डीके हैं, और मैं जेके बनूंगा और मजेदार कुछ कमाल करेंगे. और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट आता है. तो अब मैं सीजन फोर का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर रहा हूँ.
1: अभी भी इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार है हमें.
0: थैंक यू.
1: अच्छा, इन सीरीज में जहाँ पे एक्शन सीरीज होती है तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है? स्टंट्स आप करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर?
0: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते हैं. और वो कोई बोलता भी नहीं है कि आप करो. अगर डिफिकल्ट होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं. और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं, भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहां पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है, और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं,
1: यूज्ड टू हो जाते हैं.
0: कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है. जैसे हैवान में था, मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था. तो मैं टेबल पे गया, फिर वहां से जमीन पे गिरा. लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है.
1: बिल्कुल.
0: तो वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है. मेरे तो नहीं है.
1: और हैवान में आपका किरदार, अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से, कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से?
0: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी, मैं मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ.

0: लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज उन्होंने की है जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल।

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ। और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है, अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहां तक पहुंचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं तो उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूं क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहां टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन एक ये जो ऑडिशन होता है ना, अब उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको वहां पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और अच्छा करने का सोचकर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते ही रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना वो आपका बेहतर होगा। और टिके रहना एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए, कोई जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो

0: आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं इसमें हो गया। काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर गेम में है ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं।
1: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू, कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
0: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मैंने कहा किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं इसको
1: कमाल हो जाएगा
0: बहुत। हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है वो तो मुझे पता है लेकिन हाँ, अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना चाहूंगा, जुड़ना चाहूंगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर फिल्म बन रही है, मैं जरूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
1: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जैसे बोलते हैं मन का सुकून?
0: मैं घर पर रहता हूँ दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ, कि घर पे रहता हूँ, फैमिलीज जो है मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ और फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है,
1: म्यूजिक तो हम जानते ही आपको,
0: फिल्में बहुत पसंद है
1: जी,
0: तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ और बहुत मजा आया बातचीत करके।
0: थैंक यू।
1: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी, और आप बार बार आएं और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में, जी मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज मैं वहां बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से आएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे है।
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर

0: नीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को
1: राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
3: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं। हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज, अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की? आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
5: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
6: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और

0: हाँ, भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
1: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
2: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
3: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें DBT के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
1: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। DBT ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाब देही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम माहे कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।

0: अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Defence Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defence preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says, government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Keralam and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400 meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has emphasised that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent.
3: The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interest. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner, and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. The defense minister noted that the

0: एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शान से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड, और यही नहीं उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके पहले 2025

0: 1930 में नीरू ने विमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में विमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
1: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days and something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support, got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most stronger shooter in a final. In the present group of shooters.
2: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़ जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया, 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
3: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शु 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विदिन touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a master class, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Arvin Huda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final.

0: That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ibek Orel. Despite a courageous effort, Berwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
1: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
1: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है, नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गईं। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पुलसी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
3: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज़्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों से ठार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
0: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन

0: Vietnam and Hong Kong, China 3-0 in their opening matches, but Qatar provided a much tougher challenge. They edged the opening set 28-26 after India missed two set points and then took the second 27-25 despite India building a 4-point lead midway through the set. Two sets down, India showed tremendous composure to turn the match around. They kept their hopes alive by taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With three wins from three matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ आठवां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौर ने 127.70 सेकंड के साथ दसवां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने सातवां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने नौवां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगु कैसी रही जानते हैं अभिनव से।
0: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach, in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
2: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिका और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेन, डेविड बेकहम, एल्का टोचोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बवन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया, किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या बता रही हैं मुदिता।
3: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी वल्हारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप? आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगा पूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.2

0: 8 सेकंड के साथ नौवां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
1: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of two gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
2: कल कुश्ती आरंभ होगी जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।